इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है, हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और अदा बरसों। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों आज सोमवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0302565 60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0302266611। रेडियो SBS का वेबसाइट radiosbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और हर एक इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन, यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरी हरन की आवाज में सुबह सुबह लोसियों का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए सभी भक्त प्राणियों के।

SBS के जरिए हरे हरन की आवाज में ये सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई। सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन के आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। हमारे सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी ये प्रोग्राम को सुनते हैं। अगला भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आप सभी सुनने वालों को खबर किया जा रहा है कि स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। चले प्रोग्राम में खास सुंदर भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और वो भी अनूप जलोता जी की आवाज में।

भी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले कुमार विशु की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए सुंदर और सुंदर भजन कुमार विशु की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए हैं। रेडियो SBS के जरिए प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है।

मुझे आवास में ये सुंदर सा भजन प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त प्रोग्राम भजन यात्रा बस सुनते हैं। चले महेंद्र कपूर के बाद बेला जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन आज के ये प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

सुंदर और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अब की बार खास सुंदर भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते।

सुंदर भजन बड़ा भाई सेन रामबरन की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले प्रोग्राम में मीका सुखू जी की आवाज में अब की बार ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

देखिए आवास में आज के प्रोग्राम में ये सुंदर भजन अभी आपने सुना। चले अब की बार ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं, एक श्री कृष्ण भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में सुंदर सा श्री कृष्ण भजन अभी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों के लिए। चले हमारे सभी भक्त प्राणियों के लिए ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले यहां से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से भी आप सभी सुनने वालों के लिए।

सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में एक सुंदर सा श्री कृष्ण आरती भजन पेश किया जा रहा है।

अलका जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है। उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अबकी बार उदित नारायण और अलका जी की ओर एक और काफी खूबसूरत प्यार भरी गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, वेबसाइट होता है रेडियो SBS.com। उदित नारायण और अलका के बाद एक और काफी खूबसूरत प्यार भरी गाना कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में अब की बार ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आसरों मीठे की सुनकर और बेहद पसंद करेंगे।

ये काफी प्यार भरी गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई है रेडियो SBS की जरिए। तेरी चाहत में दिल ये दीवाना हुआ, कुमार सानू और साधना सरगम ने फरमाया आज की प्रोग्राम में। चले प्रोग्राम में सोनू निगम एंड अलका जी की ओर। सोनू निगम एंड अलका

सोनू निगम और अलका जी की आवाज में गाना परदेसी बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। 030-262-6611 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। गाना जो आपके बार पेश होगा कविता कृष्णमूर्ति एंड सोनू निगम की आवाज में। सभी हितनक में रेडियो SBS की जरिए बस पेश किया जा रहा है संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS।

ये प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए शहरी तरह से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले कुमार सानू एंड साधना सरगम की ओर। मैंने कहा ना, सभी हिट गाने इसी रेडियो स्टेशन के जरिए बस पेश किया जा रहा है। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS।

सरगम के आवाज में ये खूबसूरत गाना बस पेश की गई है। सुन वालों, हर एक कामों काज के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325656066। अभिजीत औरल का प्रोग्राम में

अभिजीत और अलका की आवाज में ये गाना पेश की गई है, मेरी चाहतों का समुंदर तू देखो।

जहाँ जहाँ पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं, यहाँ से हम आपको ले चलेंगे पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जो रेडियो SBS के जरिए यहाँ से आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। सबसे पहले आप सभी सुनने वालों को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी या चाय के साथ। हम आपको ले चलते हैं पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर।

बहुमत रफी सुमन कल्याण की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पिछली गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अगली बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। लता जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम

0: उफ़ियुम्मा प्यार क्यों न होगा ये अदाएं उफ़ियुम्मा।
1: लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म का नाम जब जब फूल खिले उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। तो चले अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। किशोर कुमार की आवाज में फिल्म का नाम जैसे को तैसा उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या।

उससे ये इल्जाम है, सीधे साधे भोले भाले लोगों को सताना तेरा काम है, मुजरिम तेरा नाम है। उससे ये इल्जाम है, सीधे साधे

फर्जी है क्या? जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता दे।

कुछ जानते वो नहीं, पहचानते वो नहीं, लातों के जो भूत होते हैं बातों से तो मानते वो नहीं। आ गई वो घड़ी बोल के पड़ी, आ मैं जरा तेरी बाहें मरोड़ू, बता तेरी मर्जी है क्या, बोल जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं कि छोड़ू तेरी टांगे तोड़ू, बता तेरी मर्जी है।

कैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं कि छोड़ू, तेरी टांगे तोड़ू, बता तेरी मर्जी है क्या। बोल जैसे को कैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं कि छोड़ू, तेरी टांगे तोड़ू।

हार्ट ऑफ द मिलियंस माइटी मुकीस के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में किशोर और सपना के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

दोस्तों किशोर और सपना के आवाज में ये गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई है। सुन बलो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। अनवर प्रोग्राम में होगा एक बड़ी ही खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में बस पेश किया जा रहा है।

अनवर की आवाज में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मरहूम मोहम्मद रफ

फिल्म जवानी दीवानी किशोर कुमार एन आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आपकी बार मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में आज की प्रोग्राम में ये गाना पेश किया जा रहा है। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-66-66-11। मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में अब आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम जीने की राह 1969 का फिल्म मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

Zambië. Marhoem Mohammed Rafi Ode zat ook hier bij me. Je kan heb je hebt niet zo'n jo aan die programma pies. Kijk jij op sabhi, or sabhi zo'n valukie zie van me. आशा जी की आवाज में चले मिलकर अब की बार ये गाना को सुनते हैं और फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

भिग्या चीना और साथी रे आशा जी की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था मुकद्दर का सिकंदर। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए तेरे बिना भिग्या चीना और साथी रे आशा जी की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था मुकद्दर का सिकंदर। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए

और सभी सुनने वालों की सेवा भी। आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुनकर और बेहद पसंद किया है। बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं। चले एक बार फिर से मोहम्मद रफी की ओर और गाना का बोल है ऐसे ना थे हम।

The Heart of the Millions, the Mighty Mookies की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चलिए अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

उसी फिल्म का ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार लता मंगेशकर की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है

रेडियो SBS के जरिए लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पीस की गई। चले एक गाना बस किशोर कुमार और साथियों की आवाज में पेश किया जा रहा है, एड फिल्म जान बास।

0: रेडियो SBS के जरिए फिल्म जान बास उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए गाना जो मोहम्मद रफी की आवाज में पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले।
1: अल्लाह

यमन का परवाना। मरना जीना खाना पीना हंसना रोना नहाना धोना सोना उड़ना चलना पिन्ना आना जाना हम दीवाने ने मोहब्बत में बुलाया।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई, जब जब फूल खिले फिल्म का नाम, उसी फिल्म से ये गाना अभी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का नाम।

रेडियो SBS के जरिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो पेश किया जा रहा है सुमन कल्याणपुर की आवाज में।

0: रेडियो SBS के जरिए सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं।
1: जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं के छोड़ूं तेरी टांगे तोड़ूं, बता

तुझे ये इल्जाम है, सीधे साधे भोले भाले लोगों को सताना तेरा काम है, मुजरिम तेरा नाम है, तुझ पे ये इल्जाम है, सीधे साधे भोले भाले

के दौड़ू, बता तेरी मर्जी है क्या, जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारू के छोड़ू तेरी टांगे तोड़ू, बता तेरी मर्जी है क्या।

कुछ जानते वो नहीं, पहचानते वो नहीं, लातों के जो भूत होते हैं बातों से तो मानते वो नहीं। आ गई वो घड़ी बोल के पड़ी, आ मैं जरा तेरी बाहें मरोड़ू, बता तेरी मर्जी है क्या, बोल जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं के छोड़ू तेरी टांगे तोड़ू, बता तेरी मर्जी।

0: मर्जी है क्या? बोल कैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं कि छोड़ू तेरी टांगे तोड़ू, बता तेरी मर्जी है क्या? बोल कैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं कि छोड़ू तेरी टांगे तोड़ू, बता तेरी मर्जी है क्या।
1: रेडियो SBS की जरिए गाना पेश की गई किशोर कुमार की आवाज में, जैसे को तैसा फिल्म का नाम। चले मोहम्मद रफी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले किशोर एन लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के आवाज में ये गाना पेश की गई जानवर और इंसान फिल्म का नाम गाना जो आज की इस प्रोग्राम में पेश हुआ है। एक गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज

रेडियो एस बी एस की जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में मुकेश और लता जी की आवाज में। चलिए प्रोग्राम में हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है। खूबसूरत सा गाना आपने सुना कुमार सानू की आवाज में सुनकर और बेहद पसंद किया है। के और शिल्पा राव की आवाज में चले मिलकर ये गाना सुनते हैं। ऐ दो फिल्म बचना ए हसीनो।

रेडियो SBS की सर ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई के और शिल्पा राव की आवाज में गाना भी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई है।

चलिए प्रोग्राम में अबकी बार जुबिन और साथियों की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, जरूर सुन।

रेडियो वेव्स पे इसके जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए विशाल मिठुन और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना रेडियो वेव्स पे इसके जरिए ये खास गाना जो पेश हुआ है।

आवास में ये गाना पेश की गई सड़क नंबर 2 फिल्म का नाम, फिल्म जो 2020 में रिलीज किया गया है। सुनने वालों हर एक इंफॉर्मेशन के लिए 0325 65 65 60 पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। नया फिल्म भूल भुलैया नंबर 2, उसी फिल्म का

विशाल शेखर के शान और तुलसी कुमार की आवाज में गाना पेश की गई बागी नंबर 3 से अभी आपने सुना ये खास गाना। चले प्रोग्राम में अरमान मलिक की ओर हम आपको ले चलते हैं और गाना का बोल है मेरा

रेडियो SBS की सरिये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, और वो भी अरमान मलिक की आवाज में गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

कोई चल दिया है अकेला, कोई रह गया है अकेला। ऐ दुनिया के मालिक, तूने कौन सा खेल खेला। सुन वालो रेडियो SBS के जरिए यहाँ से प्रोग्राम में मृत्यु समाचार यानी कि दुख की खबर पुकारा जा रहा है। आप लोगों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है गौर से सुनने के लिए। उत्तरेख आमस्टरडाम स्ट्रैटवेग नंबर 97 से सभी लड़कन भगवान सिंह बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे है कि गत शुक्रवार 17 जुलाई फ्राइडा 17 जुली सुबह 9:30 के वक्त बॉस एंड डाउन में 86 साल की आयु में 4 लड़कन जेन, आशा, राजेश और सीता के पिता, 12 लड़कन के आजा और नाना, 6 लड़कन के पर आजा और पर नाना, उत्तरेख आमस्टरडाम स्ट्रैटवेग 97 का रहने वाला सुरजू प्रसाद भगवान सिंह, जिन्हें लोग सुरज प्रसाद के नाम से पहचानते थे, इनका मृत्यु हो गए है। अर्थी का आखिरी दर्शन करने के लिए मौका है मंगलवार 21 जुलाई, देश तक 20 जुली रात्रि में 7:30 से लेकर के 8:30 तक, फन 7:30 to 8:30। पता को दिया जा रहा है आउटफाट सेंट्रम नोरदरफेल्ड स्ट्रक्चर बांध नंबर 1 नीवखैन शहर में। अर्थी बृहस्पतिवार 23 जुलाई, डोंदडाग 23 जुली, 2:15 की वक्त Quack over 2 क्रेमेटोरियम नोरदरफेल्ड स्ट्रक्चरबान नंबर 1 नीवखैन शहर में दाह संस्कार किया जाएगा। जिन लोग इस मृत्यु समाचार के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे या समस्त दुखित परिवार को आप शोक सहानुभूति पेश करना चाहेंगे तो तार की नंबर आपको दिया जा रहा है 06 48 49 29 सुन वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए। रेडियो SBS इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की देर में शोक सहानुभूति पेश कर रहे हैं और ऊपर वाला से यही प्रार्थना किया जा रहा है इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में पूरा पूरा शक्ति देने के लिए। रेडियो SBS आप लोगों के दुख में पूरा और पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS की जरिए भी आपने सुना प्रोग्राम में मृत्यु समाचार दुख की खबर जो पेश की गई है।

सुनने वालों रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। 12:00 प्रोग्राम में 14 मिनट वैधित हो चुका है। सभी सुनने वालों को शुभ दोपहर पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को खबर किया जा रहा है कि आज शाम में 6 बजे मृत्यु समाचार जो है एक बार फिर से प्रोग्राम में पुकारा जाएगा। आज शाम में 6 बजे मृत्यु समाचार जरूर फिर से प्रोग्राम में सुनते ही रहना।

में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले अब की बार उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

फिल्म बाजी का गीत पेश की गई उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL और उसके साथ आपको खबर किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। जुबिन और नीति मोहन प्रोग्राम में

0: सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। चले आपके बार ये गाना की ओर आपको हम ले चलते हैं। भूमि फिल्म का नाम है।
1: तारीफों के पुल बांध रहे हैं होने वाले मियां के, तारीफों के पुल बांध रहे हैं। बारात कम लगता है खुले सांड खड़े हैं, ऐसे भी क्या हीरे जड़े हैं, दर्शन छोटे बस नाम बड़े हैं।

एम जूनिता गांधी की आवाज में ये गाना पेश की गई अर्ध फिल्म भूमि एसबीएस का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। संगीत भरी स्टेशन लाइव शहरी तरफ से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अभी बार फिल्म बागी, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

फिल्म बार बार देखूं। अरबान मलिक और नीति मोहन प्रोग्राम में। सौ आसमान गाना कबूल है आज की इस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में जुबिन एंड पलक की आवाज में आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है, इश्क फॉरएवर फिल्म का नाम।

पलक की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं आतिफ असलम की आवाज में जो अब की बार पेश किया जा रहा है सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में नीरज श्रीधर और श्रेया जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब की बार ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कुमार सानू और साधना सरगम प्रोग्राम में

सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। एक गाना और कुमार सानू जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है,

रेडियो SBS की जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारी सभी सुनने वालों जो खासतौर पर स्टूडियो की ओर तार किया है, आप सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले हम आपको ले चलते हैं एक गाना हरिहरन एंड कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में जो पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03322666611।

में पीस की गई है। हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। सरो मीठे की गाना सुनकर और बेहद पसंद किया है। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं।

बदनाम सामी और श्रिया जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो SBS की जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

जीना यहाँ मरना वहाँ, इश्क सिवा जाना कहाँ। माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले प्रोग्राम में मुकेश जी की आवाज में एक और खास गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश की आवाज में अबकी बार ये गाना।

थी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज की इस प्रोग्राम में ये गाना आप सुनते ही रहे हैं।

किशोर कुमार, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में आपकी बार आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

0: मस्ताना।
1: खास तौर पर आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले काफी प्यार भरी गाना की ओर, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले एक गाना की ओर और वो भी खासतौर पर बदलते रिश्ते फिल्म का नाम है। किशोर कुमार और अनुराधा पोटवल की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

de film Badalte Riste. किशोर कुमार और अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की ओर हम आपको

गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है सुनकर और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। पद्मश्री मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर अब की बार प्रोग्राम में होगा।

कल्याण पूर और मोहम्मद रफी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले आज के प्रोग्राम में एक पाकिस्तानी फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। आलमगीर और खासतौर पर मेहनाज की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना पाकिस्तानी फिल्म का गीत जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में होगा।

लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अब की बार किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं। किशोर कुमार प्रोग्राम में।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।
0: मुझे जाने दो, मैं चल।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशली क्रमलाल, दी उफ हार्ट वेलकम हीट इन इट प्रोग्रामा गीतों के लहर। विल टू रिएक्शन कर दो टेड सर्फ मार द वेबसाइट www.radiosbs.nl ऑफ बेल नार द स्टूडियो मेट 032-62-66-11। Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag. En dat is...

सैलरू सैलरे क्या बोला फिर बोला रे. इसे फिल्म शाहरुख खान है, ऐश्वर्या राय साहब में चंद्रचूर सिंह. De film gaat vandaag gezongen door Udit Narayan, Elke Yachnik, Sonu Nigam en Jasminder Narula. Jhumka Chandida, Chandida, Jhumka Chandida.

फिल्म अभिलाषा से आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में वादियां मेरा दामन, और अब आप सुनिए लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में फिल्म हम तुम पे मरते हैं से। ये एक फिल्म है उर्मिला मातोंडकर और गोविंदा का, और वो भी टाइटल सॉन्ग गाना है हम आप में कुछ हो गया, हम तुम पे मरते हैं।

इंदु की जवानी है फिल्म का नाम और अभिनेत्री है कियारा अडवाणी। गाने के बोल हैं हीले टूट गए और गाने वाले हैं बादशाह और आस्था गिल। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है मुकेश दा की आवाज़ में। फिल्म छोटी बहन से आप सुनिए जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल।

0: इसे मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न।

0: से गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशरम, शेखर,
2: मेरे पास वक्त नहीं फजूल बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
3: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।

कसम से सनम प्यार तुमसे, करते थे करते हैं हम, उम्र भर करते रहेंगे। इस अर्धफिल्म हम आपके दिल में रहते हैं। Dit prachtig liedje is gezongen door Kumar Sanu en Anuradha Poudwil. Het volgende liedje is gezongen door Abhay en Shreya Ghoshal. Uit de film Panipat komt Sapna Hai Sach Hai.

मुझे रंग दे, इसको सुनो तो राशा भोसले एंकवा मैं फिल्म तक्षक एंड आउट द एल्बम दुनिया जिसे कहते हैं कम तो सुनो दो जगजीत सिंह कल 14वीं की रात थी।

वारा जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह मैथ। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। दित प्राप्त लीजिए सुसंग दो जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह। फोन लीजिए सो सुसंग दो जगजीत सिंह एंड कम दे सके आई द फिल्म अर्थ। झुकी झुकी सी नजर, दिल में प्यार है कि नहीं।

कोई चल दिया है अकेला, कोई रह गया है अकेला। ऐ दुनिया के मालिक, तूने कौन सा खेल खेला। सुन वालो रेडियो SBS के जरिए यहाँ से प्रोग्राम में मृत्यु समाचार यानी कि दुख की खबर पुकारा जा रहा है। आप लोगों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है गौर से सुनने के लिए। उत्तरेख आमस्टरडाम से स्ट्रैटवेग नंबर 97 से लड़कन जेन, आशा, राजेश और सीता और समस्त लड़कन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि गत शुक्रवार 17 जुलाई फ्राइडा 3 जुली सुबह 9:30 के वक्त बॉस एंड डाउन में 86 साल की आयु में 4 लड़कन जेन, आशा, राजेश और सीता के पिता, 12 लड़कन के आजा और नाना, 6 लड़कन के पर आजा और पर नाना। उत्तरेख आमस्टरडाम से स्ट्रैटवेग 97 का रहने वाला सुरजू प्रसाद भगवान सिंह, जिन्हें लोग सुरज प्रसाद के नाम से पहचानते थे, इनका मृत्यु हो गए है। अर्थी का आखिरी दर्शन करने के लिए मौका है मंगलवार 21 जुलाई, देश तक 20 जुली, रात्रि में 7:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक, फन 7:30 to 9:30। पता आपको दिया जा रहा है एटफाट सेंट्रम नोरदर्फेल्ड स्ट्रक्चर बांध नंबर 1 नीवगेन शहर में। अर्थी बृहस्पतिवार 23 जुलाई, डोंदडाग 23 जुली, 2:15 की वक्त Quack over 2 क्रेमेटोरियम नोरदर्फेल्ड स्ट्रक्चर बांध नंबर 1 नीवगेन शहर में दाह संस्कार किया जाएगा। जी लोग इस मृत्यु समाचार के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे या समस्त दुखित परिवार को आप शोक सहानुभूति पेश करना चाहेंगे तो तार की नंबर आपको दिया जा रहा है 06-48-49-28-29। सुन वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए। रेडियो SBS इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की देर में शोक सहानुभूति पेश कर रहे हैं और ऊपर वाला से यही प्रार्थना किया जा रहा है इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में पूरा पूरा शक्ति देने के लिए। रेडियो SBS आप लोगों के दुख में पूरा और पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS की जरिए भी आपने सुना प्रोग्राम में मृत्यु समाचार दुख

मैं आज्ञा चाहता हूं, श्री रामचंद्र जी के लिए कोई संदेशा हो तो आदेश हो माता।

इस पल मैं हूँ या तुम हो, गज़ों दूर सोनू निगम है श्रेया घोषाल, बस और द फिल्म आजा नच ले। And now the film An Evening in Paris comes with Sangha Dosharda. Lecha, lecha, lecha, mera dil.

कितना प्यार करते हैं तुमको सनम, मेरे दिल से पूछो ना। आपने सुना फिल्म बनारस से हिमेश रेशमिया की आवाज में। और अब आप सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में अगला गाना प्रोग्राम रेडियो SBS का। फिल्म धूम 2 से आप सुनिए क्रेजी क्यारे।

भर दो झोली मेरी वास गजोंग दोर अदनान सामी खान है क्वाम आयो द फिल्म भजरंगी भाईजान अत फोहंत लीजिए एन अत प्रोग्रामा गीतों के लहर फिया रेडियो SBS इस गजोंग दोर शान एन अलका याचनिक कॉम्ट आयो द फिल्म तलाश एन इट इस तूने कहा जब से हां

मुझे साजन के घर जाना है, इसका सॉन्ग दूर अलका याचनिक, सोनू निगम एंड जसपिंदर ने रूला एंक वाम आई द फिल्म लज्जा. Het volgende liedje in het programma Gieton Kleher via Radio SBS is gezongen door Sunidhi Chauhan en KK. Uit de film Basik Pal komt Ashk Bhi Muskuraye.

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो.